0: उसको पकड़ मेका ठिकाना नहीं
1: कोई हाकिना मराय इज इन सिडनी ट्रू और फॉल्स Pui Hākena Marae is in Sydney. True or false? False. Pui Hākena Marae is in Whangaroa.
2: Upoku Whakaru Resources proudly sponsored by Waikato Taimi.